चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मृत दे तर सब हूं जेते बत

कहूं सिमट पयो शंकर एकाठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेती उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हबे मरे पुरख।

समाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तु जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौन

0: और सामिन अब देखते हैं कि पर्दे पर आप क्या क्या कहते हैं। हमने आपको एडन राय की बात की थी अभी अभी। पीजीए सामिन पहले अंग्रेज बन गए, ऑफकोर्स उनके पास पासपोर्ट है ना, इंग्लैंड में रहते हैं, हैं तो वो हमारे, लेकिन उनको आप कह रहे हैं ये फर्स्ट इंग्लिश मैन बन गए हैं जीतने वाले 107 साल में पीजीए गोल्फ। अच्छा इफ इज पॉसिबल कैन यू प्ले, चलो कसम है हिम्मत न हारना, ए दिल तुझे कसम है, ये चंद दिनों पहले मैंने सुनाया था, कभी मौका मिला तो ज़रूर, रसीला। एरन राय 31 ईयर ओल्ड, अभी अभी जो मैंने कहा वो केनियन रूट्स हैं उसकी। हिज मदर दलवी शुक्ला वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबासा। अच्छा एरन राय की माँ मुंबासे की हैं, बिफोर एमिग्रेटिंग टू इंग्लैंड एज अ टीनेजर वो गई थी वहाँ। वाह क्या बात है रसीला, बहुत शुक्रिया आपका। और अमीर अली राना हज के बहुत अबा, डोंट यू विश यू कुड गो एंड परफॉर्म। मैं ना अमीर अली राना एक बार कर चुकी हूँ, लाजमी एक बार है, जाना चाहती थी एक ज़माने में, लेकिन समझ ना आजकल जो ये तरह तरह के स्ट्रेन्स जो हैं, मुझे नहीं पता ये फ्लू के कोल्ड के पता नहीं कौन कौन से कहाँ कहाँ से आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन का ज़रूर ख़तरा होता है। कुछ लोग तो बेचारे अस्पताल ही पहुँच गए, लेकिन जाना चाहिए ऑफकोर्स हज के लिए, सबकी ये होती है ख्वाहिश, लेकिन मैंने पूरा कर लिया है अमीर अली, ये बात मुझे बहुत तसल्ली देती है। दलवी शुक्ला इज एरन्स मम फ्रॉम केनिया, टीना आपने ये कहा है, हम सब कितने प्राउड हैं। बिल्कुल
1: हेलो प्रिंजी, वेलकम वेलकम आफ्टर लॉन्ग वीकेंड। बहुत अच्छा कि आपने रेस्ट कर लिया, अच्छा लगा, चलो आप आज आए हैं, वेलकम, अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं, सबको सुनने वाले को सबको नमस्कार।
0: हाँ जितेंद्र वो मैं रेस्ट के लिए नहीं लिए थे दो दिन, वो एक्चुअली मजबूरी थी, सारा शहर बंद था, तो हम भी यही फिर हुआ ना वो मजबूरी की वजह से। थैंक यू सो मच, वो गाना आपने सुनाया शोभना, आवर ड्यूटी, प्रणाम वंदनीय परवीन जी आपके साथ जुड़ चुके हैं भरत गंगाराम इन लंदन, अच्छी बात है। और समिन कुछ और भी हैं बातें जो खबरें भी हैं वो भी मैंने आपको देनी है, सवाल भी आ रहा है, 29 साल का लड़का है समिन, ये कौन है वो भी मैं उसकी भी खबर आपको देती हूँ, पर पहले एक गाना।

यूसुफ भट्ट ने सलाम भेजा है लंदन वाले अपने अजीजों को और कहते हैं एक गाना उनकी नजर जरूर अगला गाना उनकी नजर करते हैं। और समिन मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप किसी भी देश में दाखिल हो जाएं तो फिर वो पुलिस आपको पकड़ लेती है तो फिर कितने दिन आपकी क्वेश्चनिंग होती है क्यों वगैरह। तो अब भारत पाकिस्तान में ज़्यादा ही होता है, दहशतगर्द होने के शक में पकड़ लिए जाते हैं, कितने बेचारे माह कस्टडी में रहते हैं, इंटरोगेशन होती है, ग्रिल करते हैं उनको। अब लश्कर ए तैबा, समझिए बैंड ग्रुप है लश्कर ए तैबा, कहते हैं हिंसक ग्रोह है, इसका एक आदमी पकड़ा गया। तो समझ उन उसने अपनी कहानी बताई इंटरोगेटर्स को, जो सवाल कर रहे थे ना, उनसे पूछ रहे थे सवाल। तो समय जो उन्होंने कहा आप सुनकर हंस देंगे, ये तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले भी नरम दिल हैं, बुरा नहीं उन्होंने। तो समय वैसे तो यही सवाल होते हैं ना, क्यों आए हो कश्मीर में, किसने भेजा है आपको, क्या करने वाले थे आप, कहाँ हमले का मनसूबा बना था, योजना कहाँ बनी थी। खैर उस्मान जट पाकिस्तान से आया हुआ समन, उन्होंने बताया कि देखो पता है क्या, मैं आ गया हूँ आपके मुल्क में, तो ना मैं आया ना जब कश्मीर की वादी में, तो मैंने देखा कि बिल्कुल जो मुझे बताया गया था वादी कश्मीर के बारे में वैसा तो है ही नहीं, यहाँ तो बिल्कुल बरक्स है, ऑपोजिट है, यहाँ पर हालात अच्छे हैं, खूबसूरत वादी है, सुख का शांति का माहौल है। खैर अब मैं यहाँ भेजा तो गया था कि यहाँ आकर लश्कर ए तैबा का एक सेल खोलूं, स्लीपर सेल उसको कहते हैं जमीन, कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था यहाँ आके ना कश्मीर में तूने एक स्लीपर सेल खोलना है। मैंने सोचा नहीं, क्या सोचा फिर क्या करना है आपने, उन्होंने कहा पता है क्या, मैंने सोचा कि यहाँ मैं गंजा हो रहा हूँ, मेरे बाल इतने गिर गए हैं, वहाँ से ही गिरे हुए थे पर यहाँ तो बिल्कुल मैंने देखा है कि मेरी सेल्फ एस्टीम, मेरा आत्मसम्मान गिरा है, बिकॉज ऑफ माई हेयर गंजा हो गया मैंने।

देखा एक बहुत बड़ा इश्तहार वो कह रहे थे कि यहाँ ट्रांसप्लांट हो सकता है बालों का भारत में बड़े माहिर हैं तो कहने लगे कि मैंने सोचा कि एक शख्स के पास मैं गया मैंने कहा मुझे कुछ अच्छा सा हेयर ट्रांसप्लांट की जगह बता दो जहां मैं अपने गंजेपन को कवर कर लूं तो उन्होंने कहा हाँ हाँ यहाँ पर हैं तो श्रीनगर से बाल मैंने लगवा लिए हैं करने क्या आया था समय और कर क्या रहा है कहता मैं इतना खुश हूँ मुझे इंडिया का पासपोर्ट मिल जाए ना पता क्या मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे आधार कार्ड भी मिल जाए वगैरह तो मैं यहीं बस जाऊँ मगर माहिर कहते हैं कि उस्मान जट के आत्मा सम्मान बहाल होता है कि नहीं ये तो समिन पहले इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की हिरासत में कई महीने बैठे रहेंगे उनसे रोज़ वही सवालात किए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा खैर ख़तरनाक जो है समिन वो जो इनका मंसूबा था उसका क्या हुआ उसके ज़रिए काफ़ी कुछ पता चल जाएगा इन्होंने उस्मान जट ने वैसे ही एजेंसियों को काफ़ी कुछ बता दिया उन्होंने दो बंदे भी गिरफ्तार कर लिए लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि इसका जी लग गया है कश्मीर में

0: जी अश्विन तलत का एक और गौहर।
1: यस प्रवीण जी, ये वन ऑफ द बेस्ट गजल्स है
0: जी
1: तलत की।
0: राइट,
1: फिल्म थी फिर परछाई।
0: अच्छा अच्छा, परछाई
1: स्क्रीन में ये शाहजाराम की फिल्म थी।
0: अच्छा,
1: शाहजाराम एक्ट भी कर रहे थे।
0: अच्छा, इसमें एक्टिंग भी की।
1: की हाँ, तो स्क्रीन जी वो ही गा रहे हैं। साथ में थे जयश्री और संध्या। ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन ट्रायंगल था।
0: अच्छा, इवन ऑफ स्क्रीन
1: भी था।
0: बिल्कुल,
1: यस। तो ये दिन शांताराम आफ्टर कपल ऑफ इयर्स लिव्स जयश्री एंड देन ही लिव्स विद संध्या,
0: द सेकंड वन,
1: ऐसा द थर्ड वाइफ।
0: थर्ड, ओके।
1: तो फिल्म हिट हुई थी, सभी की एक्टिंग अच्छी थी और ये म्यूजिक था परवीन जी श्री रामचंद्र का।
0: वाह,
1: और एक ड्यूएट उनका था लता तलत महमूद का, वो अपनी कहो कुछ भी सुनो मेरी सुनो, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। फिर ये जो अभी गजल आपने सुनाई वो भी इतनी पॉपुलर हुई
0: थी। बस इनका जमाना था तलत महमूद का, है ना।
1: ऑफ कोर्स
0: ज्यादा नहीं चली,
1: दस वर्ष,
0: और
1: जो जिसको नहीं अच्छा अच्छा अच्छा लगा वो भूल गए।
0: राइट, एब्सोल्युटली।
1: लेकिन ही वाज talented Praveen ji and exceptionally उनकी मखमली वॉइस जो बोलते थे, वो
0: कभी नहीं भुला सकते, ऐसी beautiful velvety।
1: never
0: right, thank you Ashwin। और अश्विन दोषी के बाद समय हमने आपको बताना है क्या, यही कि आपने एक perfect मदारा का वीकेंड गुजारना है। समिन, आप वन नाइट ओनली बुकिंग कराएं सरहित सेंटर में 31 मई को। रेड कारपेट बिछा होगा, लाइव सैक्सोफोन बज रहा होगा। समिन, आप अपने बेहतरीन पहनावे में वहां पहुंचेंगे, टाइमलेस लव सॉन्ग सुनेंगे। जी हां, पूरी रात, ऑल नाइट टाइमलेस लव सॉन्ग्स, जो कि समय सुन सुन कर आप बड़े हुए, आप कहते हैं ये हमारा बेहतरीन यादगार नगमा है, आप कहिए, वो वहाँ आपको सुनाएंगे। प्योर नॉस्टैल्जिया होगा। कैरन वाइट हैं, उनके साथ कर्क विलम भी हैं। म्यूजिकल एक्सेलेंस है, वो कहते हैं कि ये जो है ना 31 मई का वन नाइट ओनली, ये एक म्यूजिकल एक्सेलेंस है, नॉट जस्ट अ कॉन्सर्ट। और साउंड ट्रैक्स ऑफ योर लाइफ आप सुन पाएंगे लाइव। तो कहते हैं कि टिकट ये टू पे टिकट ये टू डॉट कॉम पर आप अपने टिकट अभी अभी बुक करवाएं बिफोर इट्स सोल्ड आउट। समझ, इतने बड़े बड़े नाम होंगे जैसे कि कैरन वाइट और कर्क विलम हैं, तो फिर जल्दी बिक जाएंगे टिकट्स। तो वन नाइट ओनली का इंतज़ाम अभी कर लें और बुक कर लें। और मैंने ये भी पूछना था समय आपसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी नाफिस कर दी है। एक अफ्रीकी देश में ख़तरनाक वायरस फैल रहा है, 100 क्या 150 के मरने की खबर है, 300 से ज़्यादा मुतासर हैं। इस महामारी का नाम क्या है समय, क्या हो रहा है और कहाँ फूटी है ये और क्या हो रहा है? दुनिया वैसे फिक्र में है,

0: और फारूक बलीम कहते हैं अभी अभी आपने जो गाना सुना है वो जालिम प्यार क्या जाने, कमाल है तलत महमूद का। और आप कहते हैं कि मेरे जो मरहूम वालिद थे बहुत पसंद करते थे, चलिए उनको डेडिकेट करते हैं मिस्टर बलीम को। रंजन विनोद धन्यवाद शुक्रिया आपका, किसके लिए मेरे हर मोहब्बत ही न जो समझे। अच्छा सबको पसंद आया, कमाल है। रूपल मोहब्बत ही न जो समझे, ऑसम, आई एग्री विद यू, वन ऑफ हिज मोस्ट ब्यूटीफुल गजल्स। और पहला जो आंसर मुझे मिला है वो किससे मिला है, कल्पना। वेल डन कल्पना, आपने ये भी बताया कि कहाँ महामारी शुरू हुई है और क्या है नाम, वेल डन कल्पना। दूसरा जो आंसर मुझे मिला है वो है यासर। यासर कहते हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, उन्होंने कहा है, समझिए जो आलमी इदारा है ना उसने कहा है कि सारी दुनिया को खतरा है, उठ सकता है, सारी दुनिया में ये फैल सकती है महामारी। तो आपने नाम भी दिया यासर, यासर वेल डन, बहुत अच्छे। अमीर अली राणा आपने भी करेक्ट आंसर दिया है, बहुत खूब। शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका आपने कहा है कि नहीं, पहले शुरू कहाँ हुई थी वो बताइएगा, वे डिड इट बिगिन, पहले केसेस कहाँ देखे गए थे। बीना आपने कहा है स्वाइन फ्लू, नो। चिराग पटेल आपने करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल। रमेश हरिया ओके हुआ है, बिल्कुल सही आंसर करेक्ट है। चंद्रिका वसंत गोसाई आपने बहुत इन्जॉय किए हैं सॉन्ग्स अब तक। और यहाँ दिनेश शाह आपने गुड मॉर्निंग कहा है, कहते हैं पता है उसने रहमत ने आपको घर बैठने के लिए कल इसलिए कहा क्योंकि आप ना ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहनते हैं, सो शी इमेजिन्ड यू हैड टू रन देन यू माइट गेट हर्ट, आप गिर भी सकती थी इसलिए उसने कहा कि कल छुट्टी ले लो, दिनेश शाह। और करेक्ट आंसर भी दिया है दिनेश शाह ने, रसिला आपने कहा, लवली नंबर बाय तलत महमूद, बिल्कुल। और करेक्ट आंसर आपका ठीक है। और एक और भूपी पटेल फ्रॉम किसुमु आपने सही जवाब दिया है, आपने कहा है कि 130 बंदे ऑलरेडी इफेक्टेड, नहीं करीब 300 के कहते हैं कि अफेक्टेड हैं और 130 मरे हैं। मंजुला विश्वकर्मा आपने कहा है कि दिस इज द हंटा वायरस, नहीं ये तो एक जहाज में हुआ है ना, हंटा वायरस यॉट में, कोई क्रूज शिप में, ठीक है। लेकिन ये जो, और सोनल करेक्ट है लेकिन आपने बीमारी का नाम नहीं दिया। अमीना डेडली वायरस ये है और ये स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आपके दोनों आंसर्स। रितु गुप्ता कमाल है, करेक्ट। और ये हैं पर मेरे ख्याल से मिसेस चाना, मिसेस चाना हंटा वायरस गलत है, हंटा वायरस की बात नहीं हो रही और हंटा वायरस को तो इंटरनेशनल इमरजेंसी करार नहीं दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इमरजेंसी की बात की है वो हंटा वायरस नहीं है। ऐसा करते हैं आपको कुछ मिनट और देती हूँ, आप किसी को टेलीफोन करके या किसी से मैसेज करके पूछ लें या खुद गूगल कर लें, आपको आंसर आ जाएगा। सभी के आंसर करेक्ट थे एक्सेप्ट दो या तीन के, सो वो अपने आंसर्स करेक्ट कर लें।
1: Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM. Asian Mix. All the great songs that make your day.

Shobhna Kandi, what a lovely number. This is from Mala Sinha aur Manoj ki film. Naam kya tha? Aur samjhe isi ke saath hum aapko bata dein phir se taaki aap bhool na jaye ki music samjhe kisi tarah ka bhi ho, western, eastern, jis tarah Asian, to music never ages. Kehte it becomes part of your story. आपकी जिंदगी की जो कहानी होती है ना, म्यूजिक जो होता है, समझ, संगीत उसका हिस्सा बन जाता है. वो आवाजें आपको याद आती हैं, द मेलोडीज दैट शेप जनरेशंस, कई नस्लों को समझ संगीत करता है, सजाता है. कैरन वाइट और कर्क विलम आपके शहर में आ रहे हैं नैरोबी. क्यों? अ नाइट ऑफ सोल, जैज, रोमांस. समझ, जो भी आप चाहते हैं, आपके गाने आप याद करें बचपन के, जवानी के, उसके बाद के गाने जो आपके फेवरेट थे, तो वो आपके सुनाए जाए. और समय लाइव परफॉर्मेंस होगी जैज की, सैक्सोफोन वाले आ रहे हैं एक्सपर्ट, अनफॉरगेटेबल. कहते अकेले नहीं आना, किसी को साथ लेकर आए, फिर ही मज़ा आएगा. कब? 31 मई है, संडे है, सरित एक्सपो हॉल में. तो समझना आप अपने टिकट्स अभी से कर लें, अभी से. अ नाइट ऑफ सोल, जैज, रोमांस, और क्या चाहिए. समझ, रेड कार्पेट भी है, आपको भी उसके ऊपर चलने का मौका दिया जा सकता है.

0: बात की है कृष्ण सरोय ने लंदन से, कहते हैं उफ उफ, ये गाना सुन के मेरा दिल झूम उठा है। कहते हैं क्या अनमोल जबरदस्त शायरी थी। बिल्कुल सही आपने कहा है कृष्ण सरोय, और फिर ऊपर से लता और मुकेश का की दो आवाजें कमाल कर दिए। अच्छा हुआ आपने एंजॉय किया कृष्ण सरोय इन लंदन। और अब मैं आपको आंसर भी दे दूं, और वो आंसर है फिल्म इज अपने हुए पराए। ओह थैंक यू हितेन, थैंक यू। और सोनल मोदा ने कहा है कि इबोला है जो जिस बीमारी से हैं, तो कृष्ण सरोय जी, कृष्ण आप कुछ कहें जी।
1: वेलकम टू रोम माय फ्रेंड, ये किसने कहा है?
0: वेलकम टू रोम माय फ्रेंड कहा है इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं वो, है ना मोदी साहब को। ओके ओके ओके, अच्छा सामिन एक्चुअली कृष्ण सरोय ने आपके लिए पूछा था, मैंने ऐसे ही जवाब दे दिया। एक्चुअली वो जो मलोनी है ना इटली की प्राइम मिनिस्टर, वो नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करती है, देखकर खुश हो जाती हैं उनको। ओके और सोनल मोदा करेक्ट आंसर है आपका रसीला, ब्यूटीफुल सॉन्ग परवीन जी, कोई बुलाए और कोई आए, या मुकेश का। नीला शेथ आपने कहा है कि कोंगो, बिल्कुल समन डीआरसी कोंगो में ये वायरस इबोला का वायरस शुरू हुआ है। अब युगांडा में देखे गए हैं कोई कहते हैं।

0: from Kenya, Asia, and around the world. This is East FM News, presented by Parveen Adam.
1: ईस्ट एफएम पे बुधवार की खबरें, पहले खबरों की सुर्खियां। बुसिया में पुलिस के हाथों दो का कत्ल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के बढ़ते हुए वाकयात, एड फ्लोटिला पे इजरायली फौज का धावा और लेबनीज पे मुसलसल हमले। खबरें तफसील से। बुसिया में कल पुलिस ने दो आदमियों को गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो अपने गिरफ्तार साथी को रिहाई दिलवाने गए। पुलिस के मुताबिक उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ में मुलव्वस थे जवान जिनको हिरासत में लिया गया। जेंडर की वजारत ने मजम्मत की है जेंडर बेस्ड वायलेंस की। 10,500 बच्चों के साथ हिंसा हुई इस साल पहले तीन महीनों

में महिलाओं और बच्चों को तशद्दुद से बचाने की योजनाएं बनाई जाएं। मुल्क की सुरक्षा के मुशीर रेमंड ओमोलो ने पुलिस में भर्तियों की दिफा की है, कहा कि रिक्रूटमेंट आते चुनाव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, 400 शहरियों में एक पुलिस अफसर लाजमी है। आलमी खबरें, टर्की से रवाना हुई बहरी बेड़े को इजरायली फौज ने साइप्रस के करीब रोक लिया। एड फ्लोटिला गजा के बेबस लोगों के लिए जरूरी सामान ले जा रहा था। ग्लोबल समुद्र बड़े ने कहा है कि उन्हें शांति से गुजरने दिया जाए और दुनिया को अब इजरायल के गजा पे खौफनाक चढ़ाई का खात्मा करवाना चाहिए। हिजबुल्ला और इजरायल के दरमियान लड़ाई में 3,000 की मौत हो चुकी है। मरने वाले लेबनीज हैं। शिया इस्लामी मसले गिरोह हिजबुल्ला ने मार्च में इजरायल पे रॉकेट्स दागे थे ईरानी लीडर की मौत का बदला लेने के लिए। न्यूयॉर्क का सबसे बिजी रेल सिस्टम बंद करवा दिया हड़ताल पे जाने वाले मुलाजमीन ने। न्यूयॉर्क के पेन स्टेशन से 6,00,000 लोग गुजरते हैं एक दिन में। तनख्वाह के मुद्दे पे विवाद हुआ था। नाइजीरिया और अमेरिका ने दावा किया है कि इस्लामिक स्टेट के सबसे खतरनाक नेता अबू बिलाल अल मिनूकी को हलाक कर दिया गया। आजकल आईएस अफ्रीकी देशों में वारदातें करता है। 2023 में वॉशिंगटन ने अल मिनूकी को आलमी दहशतगर्द करार दिया था। सदर ट्रंप ने चाइना के दौरे से लौटते ही ताइवान को खबरदार किया है कि आज़ादी का ऐलान हरगिज ना करें, और वहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान कर दिया है आलमी इमरजेंसी का। डीआर कोंगो में इबोला की वबा फैली है। 140 कोंगोलीज जान बहक हो चुके हैं, 240 को बीमारी है। महामारी और भी बढ़ेगी, इस वायरस के स्ट्रेन का अभी कोई इलाज नहीं। इबोला की अलामत बुखार, गले में खराबी, डायरिया, खून का बहना है। युगेंडा तक पहुँचा है ये वायरस। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया है इंडस वाटर्स ट्रीटी को भारत यक तरफा तौर पर मनसूख नहीं कर सकता। ट्रीटी पे अब भी अमल होगा। भारत और पाकिस्तान का नदियों का पानी बांटना समझौते के तहत होगा। ट्रीटी सस्पेंड नहीं होगी। ये थी आज की खबरें। मैं हूं परवीना। All the great songs that make your day.

the Rush with Nilufer on East FM, Kenya's premier Asian mix. A very good afternoon. How are you doing? How's your day looking like? ऐसा लग रहा है हाँ जी back to normal हो गया. चलो अभी घूम फिर के वापस वही कहानी. कोई बात नहीं, हम हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए. स्टे विद मी, आई हैव गॉट फैंटास्टिक म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू राइट अप टिल 7 PM. वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन.

0: And that's exactly what Salman is also telling people. Just chill, yaar. मतलब क्यों परेशान कर रहे हो मुझे Instagram पे? तो सलमान की जो पोस्ट है recently उन्होंने चार पिक्चर पोस्ट की अलग अलग चार बार, ठीक है, खुद की सेल्फीज लेके, एक भी एंगल अच्छा मुझे सिखाना पड़ेगा सलमान को सेल्फी कैसे लेते हैं. एनीवेज सो इट वेंट, एवरीवन वाज लाइक क्या हो रहा है, क्यों लिखा है ऐसे. सो बेसिकली हिज मम इज नॉट वेल, शी इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, व्हेन द पैप्स, यू नो द पैपराजी, दे आर रियली रियली डिस्टर्बिंग हिम. लाइक मतलब छोड़ दो बंदे को यार. आई अंडरस्टैंड ही इज अ सेलिब्रिटी एंड स्टार और व्हाटएवर इट इज. उसकी माँ बीमार है हॉस्पिटल में, इतना परेशान करके रखा है, अब हॉस्पिटल के बाहर पूरा धूम मचा है, ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग अदर पीपल, दे आर पेशेंट्स इन देयर. लोगों में सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, एंड स्पेशली दिस पैपराजी, इंडियन पैपराजी. आई एम फ्रॉम इंडिया बट आई एम टेलिंग यू दे आर द वर्स्ट इन द वर्ल्ड. दे आर सो एग्रेसिव कि मैंने उनके साथ डील किया है दी आइफा. मैं खुद मुंबई से हूँ, फिर मैंने एक को बोला कि भाई देख मैं भी मुंबई से हूँ, अगर मैं भी आ गई ना दादागिरी पे तो तेरे को भारी पड़ेगा, इसलिए तू जाके दूसरे पोडियम पे खड़ा हो जा. ये इंटरनेशनल पोडियम है बिकॉज वी वर देयर फ्रॉम केनिया, फ्रॉम स्टेट्स, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड दीज इंडियंस, ओ माई गॉड, द पैपराज़ी, दे वर जस्ट सो सो ही वेंट डाउन एंड पोस्टेड ऑन इंस्टा एंड एवरीवन इज लाइक क्या हो रहा है. ही वाज जस्ट राइटिंग देयर कि भाई चिल करो. जैसे एक पोस्ट पे उसने लिखा, 60 साल का हो गया हूं लेकिन रड़ना नहीं भूला, याद रख लेना, जेल में डालूंगा, हा हा. एंड देन इन अनदर पोस्ट इज रिटन, ऐसे में 100 जला दूंगा भाई के, एक भाई के दुख पर अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ, बस ट्राई कर लेना. जब तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा ना, क्या मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा? ओके, दैट मेक्स सेंस. एंड देन ही रोट, बट इफ दे वांट टू मेक मनी फ्रॉम माय लॉसेस, कीप क्वाइट, डोंट एंजॉय. भाई भाई भाई, मातृभूमि पिक्चर डैश डैश डैश, पिक्चर इम्पॉर्टेंट है या लाइफ? सो आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम. लाइक दिस इज इनसेन. हिज मदर इज नॉट वेल एंड देयर आर पीपल इन द हॉस्पिटल एंड देयर आर अदर पीपल ही वांट्स टू रिस्पेक्ट एंड दीज पैपराज़ीज हैव मेड हिज लाइफ हेल, बट दोस पोस्ट मेड माई डे. और मुझे इतने सारे लोगों ने वो सारे पोस्ट भेजे मेरे इनबॉक्स में. आपके जीजा जी हैं वो.
1: वन वर्ड ओनली,
0: मुझे ऐसे लग रहा है अभी. Anyways, right now brain is not braining. So one word, okay, something very simple. So this is to do your brain, because we talked about brain in facts, and then we talked about your morning routine in the morning on 5 seconds only. So right now also it's to do with that. So if you had a Bollywood movie name for your brain, today we are, the theme is Bheja Fry, okay, so brain. So that if your brain had a Bollywood movie name, which one would it be? And it has to be in one word only.
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. You have been to great concerts. You have not been to this one. Grammy Award winners, Karen White, Kirk Whalum, live in Nairobi.

शोभना आपने तो मेरे शाम की शोभा बढ़ा दी. व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज. यू आर सेइंग दैट यू लव दिस सॉन्ग सो मच फ्रॉम गुरु एंड म्यूजिक इन माय किचन इज ऑन लाउड वॉल्यूम. वैसे म्यूजिक लाउड वॉल्यूम में ही सुनने का मजा आता है. कोई भी हो, मैं तो अगर जोर से ना सुनूं, यहाँ स्टूडियो में भी माय वॉल्यूम इज ऑलवेज हाई एंड समटाइम्स वी यू नो डिफरेंट स्टूडियोज वी आई इवन आर्ग्यू विच इट लाइक आई कैन हियर योर म्यूजिक एंड आई एम लाइक या आई कैन हियर योर्स इज वेल. सो या यू लोअर देन आई लोअर माय वॉल्यूम, यही चलता रहता है यहाँ पे. सो या इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून इज वेल. ब्यूटिफुली क्राफ्टेड सॉन्ग मूवी. ऐश्वर्या एंड अभिषेक लुक सो सो नाइस टुगेदर. इट्स पिंक प्योनीज टू पैम केनियाज प्रीमियर एशियन मिक्स. All right, so three statements. You tell me which one is true, which one is not. The first one, we only use 10% of our brain. That's the first statement. Second one, the brain never actually stops thinking. And the third one, people are strictly either left-brained or right-brained. Okay, which one is true, which one is not?